0: एक चीज के लिए एक आदमी अमूल्य हो जाते हैं, जिसकी मोल नहीं, तोड़ मोल नहीं होती। और ये चीज हमेशा खुदा के घर से आता है। वो चीज थी मुकेश की आवाज की टिम्बर, जिसका वो धनी था। वो टिम्बर किसी की आवाज में मुझे और सुनाई नहीं दी।
1: भाई और बहनों, ये है मेरी जिंदगी का पहला गाना।

नाना नानी, दादा दादी, काका काकी, मामा मामी, फुआ फुफा, बहन और ए भाई, तो भी सुने है तो उजाला रेडियो।

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. EU-lidstaten moeten gerichte maatregelen nemen met een beperkte financiële impact als reactie op de energiecrisis. De Spaanse politie heeft op de Atlantische Oceaan ten zuiden van de Canarische eilanden een record hoeveelheid cocaïne in beslag genomen. De politie onderzocht afgelopen week in een woning in Maassluis vanwege het overlijden van een jong kind op een kinderdagverblijf. En een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man zijn gistermiddag om het leven gekomen in het centrum van Leipzig. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: एक बार असुर राज भस्मासुर भोले शिव शंकर की भक्ति करके भोले भंडारी को प्रसन्न कर लेते हैं और भोलेनाथ उनको दर्शन देते हैं, वरदान मांगने के लिए कहते हैं। लेकिन भस्मासुर उनके साथ माँ पार्वती को देखकर मोहित हो जाते हैं, लेकिन उनको कैसे मांगे ये विचार करके एक वरदान मांगते हैं कि जिस किसी के सिर पर मैं हाथ रखूं वो वहीं भस्म हो जाए। भोले भंडारी तथास्तु कहकर चलने लगते हैं तो भस्मासुर उनके पीछे शिव पर हाथ रखकर भस्म करने के लिए आ जाता है। भोलेनाथ समझ गए कि मेरा ही वरदान मुझ पर आजमाना चाहता है। भोलेनाथ अपने प्राण बचाने के लिए भागते हैं और एक गुफा के अंदर छुप जाते हैं। भस्मासुर गुफा के द्वार पर बैठ जाते हैं। ये सब लीला नारायण देख रहे थे। भगवान विष्णु नारायण तुरंत मोहिनी का रूप बनाकर भस्मासुर को नाचने के लिए कहते हैं और मग्न होकर भस्मासुर नाचते नाचते अपना हाथ अपने ही सर पर रख देता है और भस्म हो जाता है। तो ऐसे भोले भंडारी हैं।

0: एक बहुत अच्छा गाना हमने आपको सुनाया है, बकेंद हिट सॉन्ग फ्रॉम हम ट्रिवियन वर्ल्ड हिट क्वेस्ट। नौनिहाल का गाना हम आपको सुनाएंगे। 7 बजने वाले हैं जो मतीन हो रही है न्यूज संडी आवर एंड बाकी जो मस्ती है 9 बजे तलक मेरे जरिए सुनते रहना आज उजाला का मजा में। We gaan dit uur even lekker afsluiten met een stukje van Mohammed Rafi en Mahmoud. Film Sadhu aur Shaitaan ka gana hum aapko sunayenge. Chuniya aise gana ka bol hai and on the beat of Lakshmikant and Pyarelal.
1: Chuniya, are kidhar hai re tu?

Yeah. नौ बजने वाले हैं हम सोचिला आज के लिए जो अवल बात है पते की बात है नहले पे दहले की चीज था हमने आपको सुनाए समझाए और बताए मोरखन ऑक्टन दाहोरिया आजे मैं गुड डे विद आजे रेस्ट में इनोखन मोय बेवरेडिंग्स दाग टू टू वेंस डू योर थिंग पास गुड अप योरसेल्फ एंड या हैव अ नाइस डे एक ग्रूट यू मेट एन स्टकिया लुक फुट गया

ये उजाला रेडियो है, आपका पसंदीदा रेडियो स्टेशन जो अम्स्टरडम स्टूडियो से नशर किया जाता है। आप सभी सुनने वालों को अस्सलाम अलैकुम और नमस्कार। मैं हूँ आपका हमसफर निशा। प्रोग्राम सबरंग आगाज करती हूँ ये दुआ से, मालिक कायनात आपको कभी दुखी ना करे, आपका दामन हमेशा खुशियों से भरा रहे, खुदा आपको हमेशा खुश व आबाद रखे, दुनिया व आखिरत में किसी का मोहताज ना करे।

हर बेकश के गमख्वार हो तुम नाशरीफ, आपने अभी मोहम्मद रफ़ी साहब से सुना। इसी रूहानियत अंदाज में पेश है लता मंगेशकर की आवाज़ में भजन, तर्ज है प्रार्थना सुनिए श्री भगवान।

पंडित नरेंद्र शर्मा का लिखातर संगीत रचना था संगीतकार हृदयनाथ मंगेशकर। प्रोग्राम की शुरुआत में पेश था मजहबी और भक्ति संगीत। अब हम आपके खिदमत में गजलें पेश करेंगे, उम्मीद है आप सुनने वाले इससे लुत्फ उठाएंगे। स्वर की रानी आशा भोसले से सुनवाते हैं पहली गजल, कलाम है। नियति शौक भर न जाए कहीं, तो भी दिल से उतर न जाए कहीं।

दिल छू लेने वाली गजल पेश थी आशा भोसले की आवाज में, मौसिकार मोहसिन रजा की मौसिकी थी, कलाम था नासिर काजमी का। तेरी मोहब्बत में ये कैसा एहसास है, तू दूर होकर भी, तू दूर होकर भी मेरे दिल के पास है। मैं तेरी तमन्ना को दिल से मिटाऊं कैसे, आरजू है आपकी अदा पर फना हो जाए। बेताब है दिल एक मुलाकात के लिए, मेरे दिल में है तू, तेरे दिल में है क्या, बता दे पिया।

मनहर से आपने अभी ये गज़ल सुनी, अर्जुन दसवानी की मौसिकी थी कलाम कतील शफाई का। हाथ की लकीरें सिर सजावट बयां करती है किस्मत, किस्मत अगर मालूम होती तो कभी इश्क ना करते, दिल बेकरार है मेरा।

The man with the golden voice, C.H. Atma से पेश थी ये गजल। शायर हसरत जयपुरी का कलाम था और मौसिकार शंकर जयकिशन की मौसिकी थी। इस प्रोग्राम में हम कुछ सुनी कुछ अनसुनी गाने सुनवाते हैं और कुछ ऐसे गाने जो दिल की कोने में दबी है जिसे सुनकर वो यादें फिर सामने आ जाएंगी। तो आइए सुनिए ये गीत।

रंग भरा दो गानों पेश था श्री रामचंद्र का सजाया संगीत, बोल था साहिल लुधियानवी का। चांद भी तेरे हुस्न से शर्मा गए, चांद चांद भी तेरे हुस्न से शर्मा गए, रात ने खुद को तेरे नाम पे लिख डाला।

रोमानियत अंदाज में पेश था ये डुएट। आवाजें थी आशा भोसले और महेंद्र कपूर की। तेरी मुस्कान में जादू छुपा, मेरे दिल ने तुझे ही चुना। जब भी तू मुस्कुराए जरा, दुनिया का हर रंग निराला लगा। तेरे मेरे सपने अब एक ही रंग है।

अनमोल नगमा पेश था शायर शैलेंद्र दिल की कलम से तर्स को लिखे थे, मौसिकार सचिन देव बर्मन की मौसिकी थी और आवाज थी मोहम्मद रफी साहब की। इसी अंदाज में सुनवाते हैं यसुदास और हेमलता की आवाजों में ये दो गाना।

खूबसूरत अंदाज में पेश था ये जुगल गीत, और गीत और संगीत सवारने वाले थे रविंद्र जैन। अब आइए सुने मुकेश से ये नगमा।

अभी आपने मुकेश की आवाज़ में ये नगमा सुना। अब आइए सुने आशा भोसले और महेंद्र कपूर से ये दो गाना।

0: धड़कने लगे दिल के तारों की दुनिया,
1: सबर जाए हम बेकरारों की दुनिया।
0: जो तो
2: फिल्म धूल का फूल में से ये डुएट पेश था। एन दत्ता संगीत से संवारित है और साहिर लुझानवी का लिखा तर्स था। अब आइए सुने अगला गीत।

फिल्मी दुनिया में आप सभी सुनने वालों को एहतराम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। पिछले प्रोग्राम में हमने महान अदाकार धर्मेंद्र के बारे में इत्तला किया था। ये बतलाई थी कि उसने नेहतिन शेस्तक से लेकर नेहतिन फैफ शेस्तक के दरमियान 20 फिल्मों में काम किया था। कुछ फिल्में हिट हुई और कुछ फिल्में अवाम नापसंद किया। हाँ, एक फिल्म के बारे में धर्म ने कहा था कि उसे खुद की फिल्म फूल और पत्थर पसंद था। इस फिल्म के बाद धर्म पीछे मुड़कर देखा नहीं। प्रोड्यूसर ओपी रलहन की फिल्म आई मिलन की बेला में काम किए थे धर्मेंद्र और राजेंद्र कुमार। इस फिल्म में धर्मेंद्र का किरदार नेहतिफ किरदार था, फिर भी अवाम उसे इस किरदार में पसंद किया। पिछले प्रोग्राम में बतलाई थी कि धर्मेंद्र और मनोज कुमार एक ही मकसद से मुंबई आए थे एक्टर बनने को। दोनों में दोस्ती थे और आपस में वादा किए थे एक साथ फिल्म में काम करने को। पहली फिल्म जिसमें दोनों एक साथ काम किए थे वो थी फिल्म शादी, जो नेहतिन त्वीय शस्त्र में रिलीज हुआ था। इसी फिल्म शादी में से सुनवाते हैं ये गीत।

फिल्म शादी में से ये गीत पेश था। इस फिल्म में धर्मेंद्र, मनोज कुमार और शायरा बानो ने काम किए थे। इस गीत से पहले आपने सुना कि फिल्म फूल और पत्थर, जिसमें धर्मेंद्र और मीना कुमारी ने काम किए थे, ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म थी। अवाम इस फिल्म को पसंद किया और धर्मेंद्र की एक्टिंग अवाम के दिल पर छा गया था। दोनों इस फिल्म में उम्मीदवार भी थे। जवारन वेल्ख नॉमिनेट फॉर बेस्ट एक्टर्स। इस फिल्म के बाद धर्म कई और फिल्मों में उम्मीदवार थे। फिल्म आई मिलन की बेला सपोर्टिंग एक्टर की, मेरा गांव मेरा देश, यादों की बारात, रेशम की डोरी और नौकर बीवी का नेखतिंद्रियन तख्तख में। लेकिन आखिरकार नेखती नेखतख में धर्मेंद्र को बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था, और वो भी उनके खुद का होम प्रोडक्शन फिल्म घायल की। इस फिल्म में काम किए थे धर्मेंद्र का बेटा सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री अहम किरदार में। साथ में थे राज बब्बर, मौसमी चटर्जी। बेस्ट एक्टिंग अवार्ड धर्मेंद्र को पहली बार मिला वो था नेखती स्वप्न नेखतक में, द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। बंगाल के अवाम धर्म को सराहते थे, वो द एक्शन हीरो का नाम से मकबूल था। कई फिल्मों में धर्मेंद्र ने बंगाली अदाकारा के साथ काम किया था, जैसे कि शर्मिला टैगोर, मौसमी चटर्जी, सुचित्रा सेन और राखी गुलजार। अब हम आपको फिल्म जीवन मृत्यु में से एक गीत सुनवाते हैं। इस फिल्म में धर्मेंद्र के साथ थी राखी।

ये दो गाना धर्मेंद्र और राखी पर फिल्माया गया था जो नेखते शोए फतह में रिलीज हुआ था। दो और फिल्में मकबूल हुई वो थी फिल्म शराफत और तुम हसी मैं जवान। दोनों फिल्में अदाकारा हेमा मालिनी के साथ थी। इस दौर में दयारन जोए फतह में धर्मेंद्र का दौर था द नंबर वन एक्टर। फिर वो वक्त आया जब अमिताभ बच्चन का वाकया हुआ, मंजर हुआ। प्रोड्यूसर रामेश सिप्पी फिल्म शोले के लिए पहले अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा को पसंद किया था, पर किसी न किसी वजह से शत्रुघ्न सिन्हा ने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था। और फिर भी वही धर्मेंद्र ही थे जिन्होंने रमेश सिप्पी को अमिताभ बच्चन का नाम जिक्र किया था। फिल्म शोले से ही धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की दोस्ती कायम था। फिल्म शोले में काम किए थे अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, जया बच्चन, अमजद खान और संजीव कुमार। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की पहली फिल्म एक साथ थी फिल्म शराफत, उसके बाद सीता और गीता। दोनों एक साथ तकरीबन 40 फिल्मों में काम किए हैं। साल ने खतीन फैफन सेफत धर्मेंद्र के लिए उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म थी फिल्म शोले। या कहिए हम सब के लिए ये ना भूलने वाली यादगार फिल्म है। इसी फिल्म में से आइए सुने ये डुएट गाने वाले हैं किशोर कुमार और मन्ना डे।

फिल्म शोले का गीत आपने अभी सुना किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाजों में। धर्मेंद्र में कई खूबियां थी। फिल्म शोले के कामयाबी के बाद कई प्रोड्यूसर्स धर्मेंद्र को अपने फिल्म के लिए पसंद करते थे। हिदायतकार ये ओम प्रकाश धर्म के साथ 3 फिल्में डायरेक्ट किया, फिल्म आये मिलन की बेला, आये दिन बहार के और आया सावन झूम के। तीनों फिल्में सिल्वर जुबली हिट हुई। उसके बाद ओम प्रकाश ने फिर धर्म के साथ फिल्म आसपास में लिया, साथ में थी हेमा मालिनी। इस बीच धर्म को पता चला कि डायरेक्टर ओम प्रकाश मुंबई में एक बंगला खरीदना चाहते थे, लेकिन उसके पास पैसे की कमी थी। ये सुनकर धर्म डायरेक्टर ओम प्रकाश से कहा, साहेब आगे बढ़े मुझे रकम देने के बजाय आप बंगला खरीदे, बाद में फिर पैसा देना। ये सुनकर प्रोड्यूसर महेश भट्ट को अपना तजुर्बा याद आया। फजर के सुबह के वक्त फिल्माया गया एक खास मंजर था। कैमरामैन तैयार थे शूट करने को, पर धर्म का कुर्ता पैजामा जो उसे पहनना था उस वक्त साथ लाए नहीं, होटल में भूल गए थे। होटल दूर था और ये मंजर नदी के किनारे सूरज की किरणों में शूट करना अहम था। महेश भट्ट ने कहा, होटल तो बहुत दूर है, मुझे इसी घड़ी को शूट करना है। धर्म ने कहा, साहेब आप परेशान मत होना। सामने एक बस खड़ा था जिसमें एक सरदार कुर्ता पैजामा और पगड़ी पहने हुए थे। किस तरह धर्म सरदार को समझाया वो अलग बात है, पर अचानक महेश भट्ट के सामने खड़ा था धर्मेंद्र सरदार के लिबास में। वक्त जाया ना हुआ, जिस मंजर को शूट करना था पूरा हुआ। बात ये थी कि ये शूटिंग गोवा में नदी के किनारे हुआ और होटल सिर्फ एक रात के बुकिंग था। महेश भट्ट ने धर्म के बारे में कहा, ये लड़का मिट्टी का सच्चा सपूत है। ये फिल्म दो चोर का शूटिंग था। इस फिल्म में धर्मेंद्र के साथ थी अदाकारा तनुजा। कहानी आगे बढ़ाने से पहले सुनवाते हैं ये दो गाना।

फिल्म इश्क पर जो नहीं का गीत पेश था। इस फिल्म में अदाकारी किए थे धर्मेंद्र, साधना और विश्वजीत। धर्मेंद्र ने आवाम के दिलों में छा गया था, खास करके दयानंद स्वीफ्ट से लेकर तख्त के दरमियान एक के बाद एक हिट फिल्में बनाया। धर्मेंद्र ने कहा, आवाम मुझे सराहते थे, नाम दिया द ही मैन, पर मन ही मन उसे गिला था, रंज था, इस तरह कि मनफी मतलब नेखतीफ जज्बात दिल में पल रहा था। ऐसे क्यों? लोग तो उसे एक बेहतरीन परफॉर्मर के तौर पर देखता है। और कहा धर्मेंद्र ने, हर साल अवार्ड के लिए तैयार रहने के लिए सूत सिलवाता रहता, लेकिन आखिर में कभी कुछ ना जीत सके। मुझे सिर्फ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया, लेकिन मैं अपना काम दिल से जारी रखूंगा क्योंकि फिल्म मेरी जिंदगी है। ये भी कहा धर्मेंद्र ने कि यहाँ बिल्कुल साफ नतीजा ये था कि मैंने यकीनन किसी भी अवार्ड के लिए लॉबी करने से इनकार कर दिया। ये मेरा असूल के खिलाफ है। मैं कई फिल्मों की उम्मीदवार भी थे। मैं अपनी खूबियों में भी खामियां ढूंढता हूँ। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो मैं अपने आप को कैसे कह सकता हूँ कि मैं ये हूँ या मैं वो हूँ? मैं एक बड़ा फनकार हूँ। मैं अभी भी खुद को प्रमोट करने में बहुत कमज़ोर हूँ। अब हम आपको फिल्म चरस में से ये गीत सुनवाते हैं।

फिल्म चरस में से ये गीत लिया है। इस फिल्म में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने काम किए थे। इस गीत से पहले आपने सुना कि धर्मेंद्र अपने आप को कितना अजीज हम्बल शख्स मानते थे, पर बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स धर्मेंद्र के इन बातों से सहमत नहीं थे। महान प्रोड्यूसर डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने कहा वो धर्मेंद्र को बेहतरीन फर्सटाइल जहीन अदाकारों में से एक मानते हैं। एक और शख्स वो बात दोहराया और उनसे सहमत था, वो था मकबूल कॉमेडियन बीरबल, जो धर्मेंद्र का जिगरी दोस्त था। उसने कहा धर्मेंद्र अपनी कहानी और किरदार की गहराइयों में उतर जाता था और अपने काम से बेहद लगन रखता था। और आज अगर आप लड़ सकते हैं और डांस कर सकते हैं तो आप बड़े स्टार बन सकते हैं। और मैं ये कहूँगा धर्म किसी और से कम नहीं है। और जब धर्म से सवाल किया गया कि वो कई फिल्मों में काम किया जो ब्लॉकबस्टर हिट फिल्में हुई, तो इसमें आपको क्या कहना है, तो धर्म ने कहा मेरे लिए अदाकारी कुदरत का तोहफा है। हाँ, एक बात मैं मानता हूँ, मुझे गानों पर डांस करने में थोड़ी सी घबराहट होती थी। आज के लिए मैं प्रोग्राम फिल्मी दुनिया ख़त्म करती हूँ। अगले प्रोग्राम में प्रसिद्ध फनकार धर्मेंद्र के बारे में कहानी आगे बढ़ाएंगे।

अभी आपने फिल्मी दुनिया सुना, जिसमें हमने महान मारू शख्स धर्मेंद्र के बारे में बयान किया। प्रोग्राम आगे बढ़ाते हुए सुनाते हैं लता मंगेशकर से ये गीत।

सुनहरी दौर का सदाबहार सॉन्ग पेश था शंकर जयकिशन का, सजाया संगीत बोल था शायर शैलेंद्र का। दिल भूल नहीं सकता तुझे, धड़कनों की जरूरत हो तुम से है मेरी दुनिया हसीन, मेरी पहली मोहब्बत हो तुम, तुम्हारा नाम तुम्हारा जिक्र, एक तुम और तुम्हारी फिक्र, बस यही तो है जिंदगी मेरी।

ग्रीन सॉन्ग पेश था मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। भारत व्यास का लिखा तर्ज था, संगीत से सवारे थे सतीश भाटिया। अगला गीत सुनवाते हैं, आप लुत्फ उठाइए ये दो गाना से।

संगीत अंदाज में पेश था ये डुएट। उम्मीद है कि आप सुनने वाले इस प्रोग्राम से मजे ले रहे हैं, क्योंकि इस तरह का प्रोग्राम सिर्फ यूआर के जरिए सुनने को मिलते हैं, जिसे एक पल के लिए भाग दौड़ के बाद दिल को सुकून मिलता है। ये मैं नहीं, यूआर के सुनने वाले कहते हैं।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम सबरंग आप सुन रहे हैं, जो आप सदा स्टूडियो से नशर किया जाता है। वो फासलों में भी रखता है रंग कुर्बत के, कुर्बत मतलब पास। वो फासलों में भी रखता है रंग कुर्बत के, नजर से दूर से ही दिल के पास रहता है।

ब्लैकमेल में से ये गीत पेश था। गाने वाले थे किशोर कुमार। मेरी हर बात में तेरा जिक्र होता है, तुमसे हर मुलाकात के बाद बिछड़ने का दुख होता है, मेरी नींदों में बस तेरा ही सपना होता है, और उन सपनों में भी तू मेरे साथ होता है, मेरे हर दुआ में तेरा नाम होता है, क्योंकि तेरे नाम से ही तो शुरू मेरा हर काम होता है।

अमर गीत पेश था, संगीत से सजाए थे डांसिंग, आनंद बख्शी का लिखा तर्श और दिल छू लेने वाली आवाज थी मुकेश जी की। अगला गीत पेश है, गायिका है लता मंगेशकर।

मदन मोहन की मौसिकी और राजा मेहदी अली खान का लिखा तर्ज में पेश था ये नगमा। न जाने क्या कशिश है उसकी मदहोश आंखों में, नजर अंदाज जितना भी करूं नजर उस पे ही पड़ती है। आंखों में मस्ती शराब की, काली जुल्फों में रातें शबाब की।

सदा बहार नहमा पेश था सलील चौधरी का संगीत रचना, आवाज थी द मैन विद द वेलवेट वॉइस दलत महमूद की। श्रेया घोषाल से सुनाते हैं ये नहमा।

तेरी ओर हाय रब्बा। श्रेया घोषाल और राहत फतेह अली खान की आवाज़ों में पेश था ये जुगल गीत। रोमानी अंदाज में पेश है ये नगमा रफ़ी साहब की शहद भरी आवाज़ में।

सुनहरी दौर का नगमा पेश था शंकर जयकिशन का संगीत और हसरत जयपुरी का लिखा तर्ज था। 100 बार जन्म लेंगे 100 बार फना होंगे, एक बार फिर रफी साहेब से लीजिए ये नगमा पेश है।

फिल्म उस्तादों की उस्ताद में से ये नगमा पेश था जो 1963 में रिलीज हुआ था। रवि की मौसिकी तर्स को लिखे थे असद भोपाली। मेरा क्या हाल है तेरे बिना, कभी देख तुले, जी रहा हूँ तेरा भूला हुआ वादा बनकर, जीवन एक अधूरा सपना, कुछ देखा कुछ बाकी है।

0: जीवन एक
1: कुछ देखा कुछ बाकी है, जीवन एक अधूरा सपना। एवरग्रीन सॉन्ग पेश था CH आत्मा की मधुर आवाज में। केसरी मिश्री का संगीत रचना, गीत रचना KL परदेसी का। अगला दो गाना पेश है, गाने वाले हैं आशा भोसले और रफी साहेब।

पुकारता है दिल तुझे सनम सनम, नजर नजर चहक रही है आ, छेड़ दे मस्तियों की रागनी, मैं हूँ जब तेरे लिए तो क्या है गम।

मेहरबान तुम्हारी मेहरबानियाँ, जीत है तेरे लिए खुदा कसम। मेहरबान तुम्हारी मेहरबानियाँ, जीत है तेरे लिए खुदा कसम।

है दिल तुझे सनम सनम, नजर नजर चहक रही है छेड़ दे मस्तियों की रागनी। मैं हूँ जब तेरे लिए तो क्या है गम।

0: और ये खाक सार है तेरे लिए, शिक्र सब मिटा दिए खुदा कसम, और ये खाक सार है तेरे लिए, शिक्र सब मिटा दिए खुदा कसम।
1: मैं ढूंढती हूँ कहाँ हो तुम, नजर नजर बहक रही है।
2: उजाला रेडियो का प्रोग्राम सबरंग आप सुन रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप इस प्रोग्राम से लुत्फ उठा रहे हैं, मजे ले रहे हैं। प्रोग्राम में आखिरी गीत पेश है, आइए सुनें।

और इस गीत के साथ आज का प्रोग्राम सबरंग हम खत्म करते हैं। प्रोग्राम सुनने के लिए आप सभी सुनने वालों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज। नमस्कार। खादिमा थी निश।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

यू आर उजाला रेडियो यहीं सुन वालों हम इंतजार कर रहे हैं आनंद चंद्रिका सिंह के इंतजार में हम हैं एंड आज के प्रोग्राम कॉफी चाय में और हम आपसे क्या बताने वाले हैं ढेर चीज बताने वाले हैं

0: जी मेम साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला ला ला ला बस बस बस बस बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया. म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए. रेडी 1 2 3 4 ला

फिल्म का नाम यादों की बारात, संगीतकार राहुल देव बर्मन। द मेलोडी क्वीन ऑफ इंडिया आयशा भोसले और द मैन विद एवरग्रीन वॉइस किशोर दा की आवाज के आपके कमरे में, इन योर रूम, आपके कमरे में कोई रहता है ये हम नहीं कहते हैं, जमाना कहता है। यस माय डियर, इट्स यू आर उजाला रेडियो। कोई प्यार से तो है देखे सवरिया, मेरे प्यार से तो ये देखा न जाए।

Sen nu nisa på kanska film 1950 ka film nirdos se abne bisune hesuro kabacha Mohammad Rafi sahab aur the melody queen of India Asha ji ki awaz ke koi pyar se tohe dekhe savariya koi pyar se tohe dekhe savariya mere pyar se to ye dekha na jaye मिले जुले संगीत कुछ मिक्स मार्क सॉन्ग्स आपके मध्य में प्रस्तुत किए जा रहे हैं यूआर के माध्यम से और ऐसे में हो जाए फिल्म का नाम आपके साथ अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद असीज की आवाज बहके बहके ये जज्बात कुमारी रात आपके साथ

0: क्यूआर के फोन का नंबर आप नोट कर लेना। इश्तहार, जरूरी खबरें, खास फरमाइश, मृत्यु समाचार, मौत की खबर या जो भी कार्य के वास्ते रेडियो के क्षेत्र पर 020-409-0807 0204-09-0807।
1: Yes, 24/7
0: Ujala.

फिल्म का नाम रानी रूपमती, द हार्ट ऑफ मिलियंस, द माइटी मुकेश की आवाज में आप सिलेक्शन अभी सुने हैं। मिक्स मार्क सॉन्ग्स में यू आर माय डार्लिंग, यू आर माय डार्लिंग, तू है मेरी जान।

आयशा जी की आवाज के दे दे प्यार दे फिल्म का नाम शराबी। हम आपके खिदमत में कुछ और सिलेक्शन अभी सुनाने वाले हैं। आप प्रोग्राम को सुनते रहना और सुनते जाना। यू आर उजाला रेडियो का पैगाम है और इसमें हो जाए कि देखो ये कौन आया।

उड़ाओ उड़ाओ ला ला ला ला। सुरेश वाडकर और द मेलोडी क्वीन आशा जी की आवाज, फिल्म का नाम सवेरे वाली गाड़ी। देखो ये कौन आया, इट्स नॉट मी। मिले जुले संगीत में हम आपको और भी अच्छे अच्छे सिलेक्शन सुनाने वाले हैं, और ऐसे में हो जाए इस बार कुणाल गांजावाला की आवाज, फिल्म का नाम मर्डर। भीगे होंठ तेरे प्यासा दिल मेरा, इज द वेट लिप्स सॉन्ग। भीगे होंठ तेरे, हर एक को एक शुभ दिन, मुबारक दिन अर्ज है स्टूडियो से। आप हमें जहां से भी सुन रहे हैं, प्रोग्राम को आप सुनते रहना और सुनते ही जाना।

0: क्या आवाज है,
1: प्यासा दिल में
0: भीगे होंठ तेरे, प्यासा दिल मेरा
1: लगी
0: अब रसा मुझे तन तेरा। फिल्म का नाम म्यूडर, कुणाल गांजावाला।
2: उजाला रेडियो, रेडियो तू जाने है तो।

You're listening the rocking and most sensational leader in broadcasting. You are Ujala Radio का पैगाम. मिले जुले संगीत मिक्स मार्क सॉन्ग्स आपके मध्य में प्रस्तुत किए जा रहे हैं और एक बार फिर से एक और सिलेक्शन हम आपको सुनाने वाले हैं. कुछ देर तक और हम आपके खिदमत में स्टूडियो में हाजिर हैं. आप मुलाहिजा फरमाइए इस सिलेक्शन से. फिल्म का नाम बेमिसाल.

ओ कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, सबके रहते लगता है जैसे कि कोई नहीं है मेरा। फिल्म का नाम समझौता।

फिल्म समझौता से शुरू का बादशाह मोहम्मद रफी साहब की आवाज के सबके रहते लगता है जैसे कि कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। यू आर उजाला रेडियो का पैगाम है, मैं हूं शहीद गुलजार। एक या दो सेलेक्शन हम आपको और प्रोग्राम में सुनाने वाले हैं, वैसे फोन का नंबर आप नोट कर लेना आज नहीं तो कल के वास्ते 020-409-0807 0204-09-07। रेडियो के क्षेत्र पर हर एक कामकाज के वास्ते। इस बार मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुम ही से करता है।

मिले जुले संगीत हमने आपकी खिदमत में पेश किए हैं कुछ मिक्स मार्क्स सॉन्ग्स। हमारे सभी श्रोताओं को एक शुभ दिन के साथ यही हम कहेंगे, अगर हमारे गुस्ताख मुखारबिन से कोई भी गलत शब्द फिसल गया हो तो आप हमें नासमझ जानकर माफ कर देना। एक आखिरी सिलेक्शन फिल्म का नाम फासले, किशोरदा और द नाइटिंगेल, लता की आवाज़, जन्म जन्म। एक शुभ दिन के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। मैं हूँ शहीद गुलजार।

0: You Are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Kleine 70 kilometer file in het land. De A1 is dicht vanuit Hengelo naar Duitsland na een dodelijk ongeluk bij de grens. Omrijden via Enschede over de A35 en dan in Duitsland verder over de A54 en de A31. De weg blijft dicht tot een uur of 8 volgens Rijkswaterstaat. De rechterrijstrook van de A2 is dicht vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Alfred Everdingen. Slecht wegdek daar veroorzaakt 20 minuten vertraging. 10 minuutjes op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens bij Westervoort. 10 minuten vertraging ook de andere kant op vanuit Duitsland naar Arnhem op de A12. Daar staat de file bij knooppunt Velperbroek en is 6 kilometer. En bergingswerkzaamheden op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem bij Westervoort. 3 kilometer file daar, kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: जाना रेडियो वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इंफॉर्मेशन उजाला बिंद नाउ उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारियोर जहां पर भी आप जाइए हम में साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ

के साथ गमी है पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टरडम से परिवार अक्लू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते शनिचर को 67 साल के आयु में ज़ेफ़न ज़स्तख़यार औत बड़की विधवा लीन अक्लू सुखू का छुटकू स्वर्गीय श्री भागवत अक्लू का साढ़ू भाई किशोर और महेंद्र अक्लू के मौसा पतो इंद्रानी अक्लू का मौसवा ससुर 3 लड़कन और 1 स्वर्गीय लड़का के आजा दनहाक का रहने वाला श्रीमान खेमराज मंगरू की मृत्यु दनहाक में हो गई है। इन्हें लोग राज के नाम से पहचानते और पुकारते थे। अम्स्टरडम से परिवार अक्लू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। बीते शनिचर को 67 साल के आयु में ज़ेफ़न ज़स्तख़यार औत बड़की विधवा लीन अक्लू सुखू का छुटकू स्वर्गीय श्री भागवत अक्लू का साढ़ू भाई किशोर और महेंद्र के मौसा पतो इंद्रानी अक्लू के मौसा ससुर 3 लड़कन और 1 स्वर्गीय लड़का के आजा दनहाक का रहने वाला श्रीमान खेमराज मंगरू की मृत्यु दनहाक में हो गई है। राज के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई को आप ले सकेंगे आने वाले बीफे के दिन में 11 बजे से 12:30 बजे तक Donder de aanstaande van 11 uur tot half 1. Onze zorg, uitvaartcentrum Kemurdale, Treepstraat 309, Den Haag me. Aur uske baad inhe ghar gharana ke logon me besloten kring me dah kriya ko kiye jayenge. सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो इन परिवारों के दुख में शामिल है।

उजाला रेडियो है और इसी के साथ आरंभ किया जा रहा है एक और प्रोग्राम, नाम है दर्द दिल। दर्द दिल प्रोग्राम में दर्द भरी गीतों हम आपको सुनाते हैं, जिन गीतों को सुन करके दिल को कभी सुकून मिलता है और कभी कभी दिल का दर्द और बढ़ जाता है। जो भी हो, प्रोग्राम के जितने गीतों हैं आप ही के लिए हम पेश करते हैं, इत्मीनान से आप सुनिए। पहला गीत प्रोग्राम में आज लता जी की आवाज में होंगे।

ये उनकी याद और वो नहीं आए। लता जी की आवाज, फिल्म का नाम दो बदन। 1966 ने खंतिन जैसन जस्तक की फिल्म जिसमें म्यूजिक कंपोजर संगीतकार रवि और फिल्म में काम किए उन दिनों मनोज कुमार आशा पारेख के साथ में।

पगली बरखा बरखा छाई तेरे दो नैनन में, मुकेश जी की आवाज़ और फिल्म का नाम मुट्ठी भर चावल, 1975 1975 तक के फिल्म खयाम, इसमें संगीतकार था, म्यूजिक कंपोजर, और इस फिल्म में काम किए हैं मलिका साराभाई और राकेश पांडे जी। उजाला रेडियो है ये।

ऐसा थी ना कोई मंजिल मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़। फिल्म बम्बई का बाबू का गीत 1960 निखंतिन जस्तर की फिल्म सचिन देव बर्मन म्यूजिक कंपोजर और इस फिल्म में काम किए उन दिनों देव आनंद के साथ सुचित्र सेन और अचला अचला सच देव जी।

याद करके जीवन भर, याद करके तुम्हें जीवन भर रोएंगे हम। लता जी की आवाज और 1962 नेहा तिन त्वेयन जस्तर की फिल्म सन ऑफ इंडिया का गीत। मैं उसे कंपोजर नौशाद और फिल्म में काम किए कमलजीत के साथ सिमी गरेवाल।

छिन गाड़ी कोई भड़के, किशोर कुमार की आवाज, फिल्म देखा जाए, हाँ फिल्म अमर प्रेम 1972 1972 की फिल्म अमर प्रेम से निकाला हुआ, राहुल देव बर्मन संगीतकार, और इस फिल्म में काम किए शर्मिला टैगोर, राजेश खन्ना और विनोद मेहरा। और ये उजाला रेडियो है सुनने वालों, प्रोग्राम दर्द दिल जिसमें दर्द भरी गीतों हम आपको सुनाते हैं।

कभी खुद पे और कभी हालात पे रोना आया। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ 1961 निखुंतिन एनन जस्तर के फिल्म हम दोनों से निकाला हुआ गीत। म्यूजिक कंपोजर जय देव और फिल्म में काम किए देव आनंद के साथ साधना और न

वहाँ क्या ये मौसम नहीं, मुकेश जी की आवाज़ 1969 की फिल्म रोड टू सिकम, फिल्म का नाम रोड टू सिकम और म्यूजिक कंपोजर विजय सिंह, मुकेश जी गायक हम बता चुके। और इस फिल्म में उन दिनों काम किए असित सेन के साथ अंजू महेंद्रू और ललिता पावड़।

0: मंगलवार vandaag is het dinsdag 5 mei. यही से शुरू हम करते हैं वही प्रोग्राम जिसका नाम है कॉफी चाय मिडनाइट शो ऑफ उजाला रेडियो. मैं हूं लॉयड महावीर. एंड वार्म वेलकम ऑफ दिस मोये दिनसदाग 5 मई बेवरेडिंगसदाग आज हैगा.
1: Solo porque estoy sufriendo. Colegiala de mi amor.
0: सभी को शुभ शाम पेश किया जा रहा है. सो मतें न्यूज हेडलाइंस फ्रॉम वंदाग एंड इन 60 सेकंड आज का न्यूज भी हम आपसे बताने वाले तभी मेट मेर डिटेल्स एंड नतुरलिक वाट लुख्तिगे ओनवर्पर दी वंदाग सुलो कोमें. आज हम पीर प्रोग्राम नहीं वाले हैं मेट आनंद चंद्रिका सिंह. सो मतें अब उजाला कॉफी चाय एंड व्हाट वर्ड द डेड से फॉर वंदाग. Abi Yaaf Sulina, Ujala's middagshow mee. Goedemiddag allemaal. Ujala, hey Ujala, ham ghar mein laate hain.

यू आर उजाला रेडियो यहीं सुन वालों हम इंतजार कर रहे हैं आनंद चंद्रिका सिंह के इंतजार में हम हैं एंड आज के प्रोग्राम कॉफी चाय में और हम आपसे क्या बताने वाले हैं ढेर चीज बताने वाले हैं

0: यस, दादा समलोग
1: या या या या मोई नंबर कर्म से बदले
0: वो कोनो बेतर फैसी प्रोबेरा तो फिन दादा तो पुराना गाना भाई मा के को गाना में भी एगो बोत्सखाप छुपल हैगा जो बहुत बलंगराई
1: हैगा ऑलटाइट ऑलटाइट
0: या तो
1: या ऑलटाइट या
0: दिस ई बतिया बलंगराई बस सुनने वालों तू ना सोचिए कि तो जीवन में दुखे दुख खाली लिखल बा नहीं तू कुछ बदल सके मन भी तोर सेल्फ ये बेस्ट दो
1: या
0: तो तोर हाथ की रेखा भी बदल सकेगा सो
1: मतलब बड़ा मोई बोत्सखाप है आज बफ्राइडिंसडाग के खातिर बड़ा मोई बोत्सखाप है क्या फिनटेक
0: अच्छा इंसान बन अच्छा काम कर लो झूठ में ना जा चोरी में ना जा अपलिफ्टिंग में ना जा उस सब चीज ना करिए
1: काम कर ना। जा ने काम
0: और
1: कर
0: जा हां प्रेसिस और जो कोई के हेल्पी कर पाओ तो हेल्पी कर दे मां खराबी ना कर सो मकलक इस हथियार और कर लिए
1: कन्हैया सुना हम गरी आइस खाई दने में किन्नर में खाओ आइस एते तो वहां पे दुई बुढ़िया बैठल था अब बुढ़ीवन बाइट के वहां पे भी आइस खाता इंसानी
0: बुढ़ियन के ऊपर आते बतिया
1: अरे अरे यार एक सांस तो तुफालक एक बदू इट इज नीट ऑन एयर ये बीदग बदूल मार नहीं मां दुई औरत बैठा रहा और खसालख बतिया
0: था बुढ़िया से औरत हो गया दुई गो औरत अब थोड़ा लिफ्ट है कैसे बोलिए
1: हां ओके ओके ओके दुई गो औरत
0: लिफ्ट बहुत जवान वाली ना बहुत जवान औरत ना
1: अब मां पे बैठ के आइस खाता दिस डन एक है वेल एक हम इज इन हिंदुस्तानी पार्टी दिस अस मैं eigen mensen zie dan groet ik ze gewoon op straat maakt niet uit waar ik ben dus dan wat we vertellen dan hoe auditeren op leeftijd ke bij groeten kalita maar bij het theater hier en toen vertelde ik wie ik ben wat dan ook nou bolki hem ujala party ujala lloyd party van ujala ke maar अपन कहानियों ने बताया तो और मतलब सुन बैठ बैठ बैठ नहीं हम लोग अब बतिया हो जाए यहाँ पे तोरी बतिया मिल हे देना हम ज्यादा घर है हम ना यहाँ पे तोरी बतिया तुलो से
0: मा इस तो यूज गेसेलग
1: इट इज ऑल गेसेलग मा यार
0: तुम्हें साशे द टाइट है
1: या नहीं हमें टेमो ना रहा था मुली हमली तुरंत अपन आइस खा हम जाइला
0: मा बीच हु फाक एक दिस सो दिंग अ दो लॉयड
1: या
0: हां एक स्टार फॉर ओपन है हम सब कुछ से बतियाला
1: या
0: एक्ट वर
1: या
0: हां मा तक काबिल फिर
1: Nee, hem tel gelie, maar het was wel grappig dat die vrouw zei van, ab niet toe bij dat het er niet door hier nog kaartel jij,
0: maar een beetje aandacht, een beetje liefde geven aan
1: maar
0: mensen.
1: Dat heb ik gegeven.
0: Dat bedoel je?
1: Ja, tuurlijk.
0: Een beetje liefde, ja. Jij na door samai raha, jij na door mogelijkheden raha, ook na kalle.
1: Ja, en ik vond het leuk.
0: Maar koi en mihaiga.
1: Ha. Koi en mihaiga. Nee.
0: Koi en mihaiga, jij negeer kariga.
1: Ja.
0: In plaats van dat je even knikje, weet je, eventjes groet kan de hallo, kaise, ja. Klaar.
1: Ja.
0: Je hoeft niet urenlang, hè, maar thora se jaar, vriendelijkheid.
1: Ja, tuurlijk.
0: Thora menselijkheid.
1: Tuurlijk. En groeten. Maar hamlok me heiga. Hamde niet, of het in Hindustan zo is, maar hamlok in Hindustan, ik heb een keer de kila, dan lopen we snel weg of wat dan ook. We groeten elkaar eigenlijk niet. En,
0: ja, dat blijft een ding waar we aan moeten werken, hoor, Lloyd.
1: Oké.
0: Omu
1: or tante doen dansie karega? Wat was het?
0: Nee, omu niet. Omu na. Zon. Dus kabi kabi ham jaila ego nauta me.
1: Ha.
0: Kabi kabi, niet zo vaak.
1: Nee.
0: Madhalle gaile ego nauta me. Kono bia me. Lau ego bia ego mooi voorbeeld ba.
1: Ja.
0: Koi ke bia hovega.
1: Ha.
0: Batwaan heiga. Bia ke din heiga.
1: Ja.
0: Ego band khelega. Allemaal gezellig.
1: Ja.
0: To? Hartstikke leuk.
1: Ja.
0: मैं कभी कभी ऐसा बैंड खेलेगा ऑफ ऐसा बाजा बजेगा कि पोडियम पे तू देखिए कि तामतस जो है फुआ मौसी मामी एंड आजी एंड नानी ओ घोर
1: अच्छा
0: कौन मनीर पे नाचे है
1: या
0: कि हमें शर्म लग जाएगा यार
1: ओके मैं कैसे नाचेगा
0: एकदम ऑर्डिनेर एकदम जमीनिया पे एकदम boy
1: lote hote lag rahe hain
0: sake sucking
1: sucking
0: dus da denk je ook van hey sunna ego bia me aile baat ego dansi me na ego dansi me tu gaile aur nachle ise prima
1: tu kuch aur baat rahe na mai ego parivar me
0: ha tor betwa ya bitiya ke bia ba aur tu aise nachega
1: yeah
0: dus

उजाला रेडियो डे अवे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते ओटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो।

ये किसके दिल का करार हो तुम, ये किसकी आंखों का नूर हो तुम, मुझे ये मालूम हो रहा है, मुझे ये मालूम हो रहा है कि जैसे मेरा

0: कुड़ी फंस गई।
1: अरे ये क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था।
2: अरे रास्ता रास्ता देखो आप, मेरी लड़ी है।

0: एक कुड़ी फंस गई।
1: ओफो, ये क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा था।
0: अरे रास्ता रास्ता देखो आप मेरी लड़ी है। अरे रास्ता रास्ता देखो आप मेरी लड़ी है। आप जिससे लड़ी है वो पास मेरे।
2: You are.